0: हेलो,
1: हेलो,
0: दामे के
1: अरे
0: थारे
1: यार मैं
0: क्या हुआ? दामे के थारे का
1: अरे
0: खेख रहे उधर गए बिचे। अरे वो क्या गौन वाका हुआ? सुनो ना, तुम निकला के चुन सी रही हूँ।
1: अकरन
0: अकरन अल्लो के नंगो लो कचिंग कुना ना चिंग कर लो को द अंच दरे याय अल्लाह अल्लाह कुछ ऐसे कर लो को तेरा गुजिया ना जरा रहे हो बिकने ना क्या गरो को बाबा की जो वाट तुरसी ने चलो ना ये ना चलो कुछ ने चलो कुछ ऐसा लो कुछ वाट देख के मकरन सा अल्लो के ना कल लो कचिंग का ना वो कहते अल्लो दरे याय अल्लाह अल्लाह जी अजय इंदा अच्छी दा जिन टेलीविजन अजय कर लो। हेलो हेलो,
1: अरे
0: अरे सर दाब के थारे तो वाला बात आया सुना वो ना फिर नहीं काम मुझे करे के बात ऐसा वो ना सुना सर लफ़ज़ी तो क्या करना है इनके जो अरे देखा अब रे चुआ तो अरे जी वन वाक वातो तो उन लोग बात आपको मार गिरा कोई तातु नॉम सोचते हैं हम से आते ना अबुगुआ वातो बजे मार यार इस आपको सुबह ना बाय शिशा मुख इरावन दूसरे ने शेरी ना मुदा सुनो वातो ठीक ना बाया तो लोग चंद का जुआ का तो ठीक ना चुनो मुख दोस अबुगुआ अबुगुआ ना परिंचिकी ना बाइंचिकी ना बाचरे